0: प्रभा बहनी, मौसी, बहन जी, माता जी, यू विल ऑलवेज रिमेन इन अवर मेमोरीज एंड थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट दोज मेमोरीज दैट वी कैन नाउ चेरिश. थैंक यू. नमस्ते. शांति, शांति, शांति.
1: देयर वाज एन एक्स कोलीग ऑफ फिजी ब्रॉडकास्टिंग कमीशन एंड अ वेरी पर्सनल फ्रेंड ऑफ लेट प्रभा मिश्रा, शोभना बली. और अब चलो शामिल करते हैं अनदर फेवरेट्स ऑफ लेट प्रभा मिश्रा, जिसके बाद आप सुनेंगे शील को, ओल्डेस्ट डॉटर ऑफ लेट प्रभा मिश्रा, ऑल द वे फ्रॉम मोलिंग.

0: यादों के सफर की जगह पर आज सुबह संगीत की झनकार पर आप सुन रहे थे एक विशेष प्रोग्राम, एक लम्हा साथ तुम्हारे। और एक लम्हा हम गुजार रहे थे लेट प्रभा मिश्रा के साथ। द मटेरियल फॉर दिस प्रोग्राम वॉज गैदर्ड फ्रॉम द फ्यूनरल सर्विस ऑफ लेट प्रभा मिश्रा हेल्ड ऑन 28th of August, Friday, 28th of August, here at Mount Thomas Memorial Gardens, Holland Park, and with the permission of the youngest daughter, Rani Mishra. Following the journey of late Prabha Mishra gave me deeper insight on the evolution of the personalities in the platform of Fiji Broadcasting Commission, hence my allocation of 1 hour for this special program. As a child of 8 or 9, I followed this institution of Fiji Broadcasting Commission and carried it with me till now. Testimony of my attachment to this platform is my effort to play host to many of the ex-announcers and presenters of Fiji Broadcasting Commission and include them in my radio programs here in Brisbane over the last 40 years. Starting with Noor Jahan, who accompanied me here for 3 years, Ranjana Kumar for 6 months, and late Ramesh Chandra when he was returning from India after taking lessons from the famous Amin Siani of India. And I have been using all the station IDs and breakers by Ramesh Chandra in my program over the years. And as we take a station break with Ramesh Chandra's voice, I will return with Sangeet Ki Jankar after a short break of commercial.
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा। इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फिजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत की झनकार।
2: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।
0: यह है संगीत की झनकार और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन 79 ब्रिस्बेन पर। प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं यादों के सफर के साथ, चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाली हुई यानी कि हिट्स ऑफ 50s, 60s और 70s से निकाली हुई चुने हुए संगीत। ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, द गोल्डन एज ऑफ बॉलीवुड। अभी थोड़ी देर में कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आकर जारी रखेंगे द अदर गोल्डन एज ऑफ बॉलीवुड, हिट्स ऑफ 90s। संगीत की झनकार आने के लिए और इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपके साथी फिरोज खान और हमारे स्टूडियो में 5 मिनट हो चुके हैं 11 बजकर। वापस आकर एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं संगीत की झनकार पर। अभी आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए लोकप्रिय संगीत, कमर्शियल से पहले कुछ चुने हुए लोकप्रिय 40s, 50s और 60s से निकाली हुई, जिसको हम पेश करते हैं हर रविवार के सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक। और 12:30 से लेकर 5 बजे तक आप सुनते हैं रॉय और सू को। Roy or Sue are always present here with and standing by with telephone number 3279-1701 और आपके request, dedication और cheerios भी शामिल करते हैं अपने program में। और आपको याद रहे फिर 5 से लेकर 7 बजे तक all the way from Wellington, शशि अपने studios Wellington से live आपके लिए पेश करते हैं विशेष program, mixture of entertainment and information। शशि 5 से लेकर 7 बजे तक। एंड जॉइनिंग मी नाउ इज शशि ऑल द वे फ्रॉम वेलिंगटन। शशि वेलकम टू संगीत की झनकार हियर इन ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन द सिटी व्हिच इज ब्यूटीफुल वन डे एंड परफेक्ट द नेक्स्ट। एक्चुअली द टेम्परेचर विल गो टू 22-23 एंड इज गोइंग टू बी सनी फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। आई फील सॉरी फॉर यू विंडी कोल्ड वेलिंगटन। हाउ आर यू?
3: के बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगी लोगों को, क्योंकि हमारे लिसनर्स सब विश्व में सभी तरफ लोग सुनते हैं ना रेडियो ब्रिजवानी। तो ये न्यूजीलैंड की
0: सुन रहे हैं शशि जोखन को, जो रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर हर रविवार को 5 से लेकर 7 बजे तक मिले जुले प्रोग्राम आपके लिए पेश कर। तो इंतजार कीजिए 5 से लेकर 7 बजे तक शशि के साथ। तो फिलहाल संगीत की जानकारी पर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वादे के मुताबिक आपके लिए दी अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड हिट्स ऑफ 90s।

On this radio 701 Brisbane, your host Rose Khan, looking forward to the pleasure of your company. आप सब सुनने वालों को फिरोज खान का नमस्ते आदाब अस्सलाम और सासिका। आप अक्सर हमारे साथ देते हैं रविवार को और हम आपका साथ देते हैं इसलिए।

Oh boy, the chemistry of Alka Yagnik and Udit Narayan. Amir Khan ke film Man Se Nikali Hui, आज रात्रि की पहली नगमा आप सुन रहे थे संगीतकार संजीव दर्शन, गीतकार समीर और आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक। आपने हमारा साथ देते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से, चुने हुए लोकप्रिय संगीत 90s से निकाली हुई ऐसे गीत जो अपने हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है। ऐसे ही गीतों से अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। फिलहाल गीत माला को आगे बढ़ाते हुए पेश करते हैं एक बार फिर उदित नारायण और अलका याग्निक, संजीव दर्शन संगीतकार गीतकार समीर, फिल्म मन।

माला के गले में घुमा दिया। सुन रहे थे फिल्म ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम, सैफ अली खान ऋतिक रोशन की फिल्म, राजेश रोशन संगीतकार, गीतकार आनंद बख्शी। संगीत के झनकार की शुरुआत हम करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से। आपने हमारा साथ दिया तो आपका स्वागत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से। चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने और नए फिल्मों से निकाली हुई ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे ही गीतों से अपने कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। आगे चल के भूले बिसरे नगमे भी और शेर शायरी गजलों का एक हसीन संगम शेर नगमा, लेकिन गीत माला की दूसरी नगमा फिल्म अंदाज नदीम शर्मा संगीतकार, गीतकार समीर, आपका साथ फिरोज खान संगीत की जानकारी।

सुन रहे थे फिल्म अंदाज से निकाली हुई, संगीतकार नदीम शर्मन, गीतकार समीर। और इस बार गीतमाला में हम शामिल करते हैं फिल्म कच्चे धागे। कच्चे धागे से निकाली हुई आवाज अलका याग्निक और साथ में हंस राज हंस। यह है संगीत की जंग।

0: दीपमाला के अंदर। कभी आप सुन रहे थे फिल्म कच्चे धागे से निकाली हुई, हंसराज हंस के साथ अलका याग्निक गीतमाला में।
1: दिलों को झंकृत करे,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे,
3: और ये है संगीत की जनता रेडियो 701 ब्रिस्बेन, और आपके साथ फिरोज खान।
2: खेल उठे हैं भूल कुछ उसकी जवानी की तरह, आज बिखरी है कई यादें कहानी की तरह।
3: यादों का सफर आज शाम को करीबन 6 से लेकर 7 बजे तक गीत माला के बाद चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुरानी फिल्मों से निकली हुई संगीत की जानकारी।
1: रेडियो संगीत की जानकार, मनोरंजन संस्कृति और समाचार। यह है संगीत की जानकार और आप सुन रहे हैं रिसेंट पास्ट हिट्स।
2: अपने हर कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं गीत माला के साथ, जिसमें ऐसे गीत हम पेश करते हैं जिसे एक बार सुने तो बार बार सुनने को जी चाहे।

संगीत की जानकार को आप सुन सकते हैं 5 से लेकर 8 बजे तक हर रविवार को स्टेशन पर 1701 ब्रिस्बेन। और आपके साथ फिरोज खान। आगे चल के यादों का सफर और शेरो नगमा, लेकिन गीतमाला में आपके लिए ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है, उनमें शामिल है फिल्म सिर्फ तुम, नदीम शर्मन संगीतकार और गीतकार समीर। साथ दीजिए, रविवार है ना, 5 से लेकर 8 बजे तक।

0: गीतमाला की दूसरी नगमा भी आप सुन रहे थे फिल्म सड़क से निकाली हुई, संजय दत्त और पूजा भट्ट के फिल्म कुमार सानू के साथ अनुराधा पाडवाल। और अब माधुरी दीक्षित एट हर बेस्ट विद आमिर खान, फिल्म दिल 1990 के रिलीज। आनंद मिलाज संगीतकार, आवाज उदित नारायण, साथ में अलका याग्निक और इस फिल्म में अनुपम खेर भी काम किया था।
1: आपने हमको चुना तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं माला से, गीत माला अनमोल नगमे, नए पुराने फिल्मों के गाने गीत माला में।

0: आमिर खान और माधुरी दीक्षित फिल्म दिल से निकाली हुई 1990 के रिलीज, आनंद मिलान संगीतकार और साथ में उदित नारायण और अलका याग्निक। संगीत की जानकार गीतमाला के अंतर्गत भी आप सुन रहे थे माधुरी दीक्षित की ब्लॉकबस्टर मूवी दिल।
1: Hi, I'm Padma, and you're listening to Hits of the 90s and Recent Past Hits with your host Feroz Khan. I'll be joining him later on in Sher-o Nagma with some Sher and Shairis and Reserves. Looking forward to the pleasure of your company. That is Sher-o Nagma after Geet Mala.
0: जी हाँ, गीत संगीत शायरी और गजलों का एक हसीन संगम शेर-ओ नगमा गीत माला के बाद। हफीज अली खान, पद्मश्री, रंजना और शायद यूज़ ट्रूली भी चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुरानी और नई फिल्मों से निकाली हुई गीत संगीत शायरी और गजलों का एक हसीन संगम शेर-ओ नगमा गीत माला के बाद। फिलहाल गीत माला में शामिल करते हैं फिल्म आशिकी।

0: राहुल रॉय, अनु अग्रवाल और अवतार गिल की फिल्म में दिनचार संगीतकार गीतकार समीर।
1: रेडियो संगीत की जानकार, मनोरंजन, संस्कृति और समाचार।
2: दिल दिल से मिला कर देखो,
0: यह है रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन्स फर्स्ट 24/7 हिंदी रेडियो स्टेशन।
2: अपना तो बना कर देखो,
0: जी हाँ, अपना तो बना कर देखो। We present, you decide. You phone us on 3279-1701. We listen to you because you listen to us.
3: संगीत के झनकार 1701 ब्रिस्बेन पर आप सुन रहे हैं रिसेंट पास्ट हिट्स ऑफ 90s फिरोज खान के साथ। आगे चलकर शेर उल नगमा में मैं हफीज अली खान आपकी खिदमत में चंद गजलियात और कुछ शेर व शायरी पेश करेंगे, तो सुनना ना भूलिएगा।
0: फिलहाल गीतमाला को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए पेश करते हैं फिल्म मेरे दिल के आंगन में। निखिल बने संगीतकार, रानी मलिक गीतकार, आवाज कुमार सानू।

0: गीत माला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे दिल के आंगन में से निकाली हुई कुमार
1: शर्मा इन द लीड। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम सलमान एंड अनुष्का विल बी सीन शेयरिंग स्क्रीन स्पेस टुगेदर। दैट्स द बॉलीवुड न्यूज फॉर दिस वीक। आई विल बी बैक विद मोर न्यूज नेक्स्ट वीक

Good afternoon and welcome back to Radio Brizvani. और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। मैं हूँ रोहित सिंह, जिसे भी से लेकर ढाई बजे तक आपका और हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। आपने अपना रेडियो भी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। और एक बार फिर राम राम, किंचो सत श्री अकाल और सलाम तथा बुला कहते हैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। मैं हूँ रोहित सिंह, ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। जरूर से साथ दीजिए दो घंटा का रंगारंग कार्यक्रम में, शाम का सफर नामक कार्यक्रम में, और आपका हमारा साथ रहेगा ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक। जुड़े रहेगा दो घंटे के लिए हमारे साथ। याद कीजिएगा आपका हम सफर मेजबान रोहित सिंह साथ देगा ठीक दो घंटे के लिए। हमेशा की तरह फोन नंबर 3279-1701। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है दोस्तों साथियों, साथ दीजिएगा दो घंटे के लिए रोहित सिंह के साथ रहेंगे आप, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप देश विदेश में हैं, इंटरस्टेट में हैं या ब्रिस्बेन में हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर एक बार फिर। साढ़े 12 बज चुका है तो आप शायद भोजन कर रहे होंगे, खूबसूरत सा दिन है, शायद आप बाहर बैठे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, शायद आप पिकनिक कर रहे हैं, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं आप सभी। साथ दीजिएगा ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक बिजली चमक के साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। कार्यक्रम लाइव अपने स्टूडियो से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, हमेशा की तरह फोन नंबर 3279-1701। बरसात आके खूबसूरत सा कार्यक्रम हमारे साथ रेडियो ब्रिजवानी पर आप सुनने जा रहे हैं।

और आपने अपना रेडियो भी खोला है, आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर रेडियो भिजवानी पर। मैं रोहित सिंह, ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है। चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह स्थानीय कलाकार और सोफी जी के हमारे पास कुछ स्थानीय कलाकार है जिसे हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। बारीकी से जरूर साथ दीजिएगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
4: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao, ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
5: अंत साथियों, शुक्रवार से कृष्ण जन्माष्टमी शुरू हुआ है। ये पर्व आप सभी के लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। चलते हैं कृष्णाष्टमी पर आधारित दो भजन मैं आपके लिए पेश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भजन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। याद कीजिएगा, रोहित सिंह के साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: Digicel, better together.
5: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
6: स्वर्गीय मोहम्मद अजीज और स्वर्गीय सुलक्षणा पंडित की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले हैं श्रीमान श्रीमती गंगा और गीता प्रसाद।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत फरमाइश करने वाले श्रीमान श्रीमती रवि प्रताप आप दोनों के लिए

0: renting and thinking about owning one, or maybe an investor looking to invest. Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।
2: रोशन के साथ कार्यक्रम रेडियो ब्रिजवानी पर आप सुन रहे हैं।

उसी के साथ रेडियो प्रिंसवानी पर आप सभी खूबसूरत गीत और खूबसूरत कार्यक्रम सुन रहे हैं। याद कीजिएगा हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 2:30 बजे तक, जुड़े रहेगा हमारे साथ रेडियो प्रिंसवानी पर। आशा भोसले की आवाज में आप सभी के लिए दो साथी एक बार फिर फरमाइश करने वाले शिवम श्रीमती गंगा और गीता प्रसाद आप दोनों के लिए।

जितने भी नोट साइट के श्रोता है, कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। चलते हैं आप सभी के लिए ये खूबसूरत से गीत मोहम्मद अजीज और आशा भोसले की आवाज में।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
10: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
11: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
10: अच्छा, वो क्या?
11: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
10: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
11: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
10: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
12: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
10: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
12: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
13: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.
14: खूब सा संगीत शाम के सफर में रोशन के साथ रेडियो ब्रिसवानी पर. शादी का ठीक 2:30 तक आपका हमारा साथ है. आशा भोसले की आवाज में एक बार फिर फरमाइश करने वाले श्रीमान श्रीमती गंगा और गीता प्रसाद आप दोनों के लिए

रोहित सिंह साथ रेडियो मिजबानी पर खूबसूरत से गीत आप सभी सुन रहे शाम के सफर में जरूर से साथ दीजिएगा ठीक ढाई बजे तक। घड़ी के अनुसार ठीक चार मिनट रहना चाहते हैं दो बजने में।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

कार्यक्रम में 2:30 बजे समाप्त हो जाएगा, साथ जरूर दीजिएगा।

और इसी गीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम के समापति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारी आपकी मुलाकात अगली बार होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। रेडियो बंद मत कीजिएगा, थोड़ी देर में आप सबके साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे, उनके साथ जरूर दीजिएगा ठीक 5 बजे तक। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए रुक्षित रहो मैं, नमस्ते, हैव अ प्लेजेंट आफ्टरनून, द बेस्ट ऑफ वीकेंड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वीक अहेड, साथ में शब खैर और विना का।

हेलो वंस अगेन एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701. हमारे स्टूडियोज में ठीक 2:30 बज चुके हैं. एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जो आज रेडियो विजवानी सुन रहे हैं और जो आज पहली बार भी हमें सुन रहे हैं, आपका डबल स्वागत. रेडियो विजवानी 24/7 आप सुन सकते हैं हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से आपके साथ. सो अभी से लेकर ठीक 5 बजे तक साथ हमारा आपका.

hope everyone's enjoying a beautiful weekend out there. इसी के साथ साथ अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, आपकी जन्मदिन है, कुछ भी है, तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी सी बधाइयां। जी हाँ, अगर आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं रेडियो विजबानी आईएम पर हमारा फोन नंबर 3279-1701, नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर जरूर एसएमएस कर सकते हैं। बहुत महान सप्ताह चल रहा है हमारे हिंदुओं के लगे, कृष्ण जन्माष्टमी। तो हम यही कहना चाहते हैं दोस्तों, कृष्णा के कदम आपके घर आए और आप खुशियों के दीप जलाए, परेशानी से सभी आंखें चुराए। गोपियों के रास जिसने रचाए, उसी कन्हैया का जन्मदिन आया और हम साथ मिलकर कृष्णा का जन्मदिन मनाएं।

0: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: ਮਈਆ

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701। अभी आपने कृष्णा बहुत प्यारा सा भजन सुना, मैया मैंने माखन नहीं चुरा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में जतीश भाई यहाँ पर बैठे हैं। और जतीश भाई, आपका क्या कहना है?
1: नमस्कार दोस्तों, अब मैं क्या कहूँ। पापी पेट के सवाल है, पेट के पीछे बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है। भगवान ने इतना झूठ बोला देखो कि मैं नहीं खाया, नहीं बट उन्होंने कहा था मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैंने ही। अब सुनने में लगेगा कि मैं नहीं माखन चुराया हूँ, लेकिन मैंने ही माखन चुराया, समझ गया।
0: तो फिर उसको सपोर्ट करने वाले,
1: हाँ ये उसके जो चमचे लोग थे वे लोग भी साथ में झूठ बोलने लगे, क्या करेंगे दोस्तों। देखिए छोटा मोटा इसका मतलब होता है, छोटा मोटा झूठ बोलने से वो तो इतना भारी पाप नहीं है। जहाँ पर पेट के सवाल है, अगर भूख लगा थोड़ा खा लिया आपने, कोई बात नहीं।
0: जी हाँ दोस्तों,
1: नटखट था ना, नटखट छोटा था,
0: प्यारा सा
1: क्यूट सा था। जी हाँ,
0: तो चलते हैं आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगला गीत के लिए। फरमाइश हमारे पास आई है और आज की सबसे पहली फरमाइश है हमारे पास शिकागो से आमला सिंह की ओर से। आमला, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

0: ज्यादा सो बहुत प्यारा गीत आपने सुना और इसकी फरमाइश करने वाली थी अमला सिंह फ्रॉम शिकागो। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्मानी, 3:15 बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज में।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
5: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शानिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शानिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
6: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
5: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
7: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
8: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
7: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
8: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो विस्मानी 1701 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 माइल्स रोड ब्रिस्बेन से बस 5 मिनट रह गए हमारे स्टूडियोज में। 3:00 में हमारे पास बहुत से रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ गए हैं और जैसे अभी आपने सुना, हमने बहुत प्यारा सा गीत आपके लिए पेश किया, मैया मैंने माखन निचरा। और आपने सुना है ज्योतिष भाई ने क्या कहा? जी हाँ, अगर पेट की बातचीत है तो कौन सोचता है। फिर चलते हैं एक और कृष्णा भजन हमारे पास है। फरमाइश, कृष्णा तेरी गलियों का जो आनंद है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं, जो मजा तेरी वृंदावन की रज में है मैंने पाया किसी भी बिछौरे में नहीं। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, और वृंदावन की सुगंध ब्रिज का फुहार फरमाइश हमारे पास चलते हैं। अभी आपने माखन चोर वाला ही गीत सुना है, लेकिन अगला गीत जो है बहुत प्यारा सा गीत है। उनके दोस्त सुदामा जी पहुंच जाते हैं कृष्णा जी के दरबार, और इस गीत को फरमाइश करने वाले हैं जोनी और सविता फ्रॉम केड्रोन पार्क।

0: बहुत प्यारे से भजन कृष्णा और सुदामा की दोस्ती पर आपने सुना, जिस गीत को इस गीत को फरमाइश करने वाले थे जोनी और सविता फ्रॉम केड्रोन पार्क।
1: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302288009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
0: तो चलते हैं दोस्तों अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और देखें हमारे साथ कौन सफर कर रहा है। और सफर ब्रिस्बेन में नहीं, बहुत दूर सफर करें हमारे साथ सैक्रामेंटो यूएसए में कामिनी नारायण और ललिता गौतम दोनों इस वक्त वहां से कृष्ण जन्माष्टमी से अपने घर की ओर गाड़ी में सफर कर रहे हैं। आई एम श्योर कृष्ण हैज ब्लेस्ड यू बहुत। तो चलते हैं आप दोनों के लिए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

प्यार किया तो डरना क्या, फिल्म का नाम मुगले आजम और फरमाइश करने वाली थी ललिता गौतम, साथ में कामनी जो इस वक्त हमारे साथ ड्राइव पर है सेक्रामेंटो यूएसए में। चलते हैं दोस्तों कृष्णा भजन की एक और अगला गीत की फरमाइश है हमारे पास लक्ष्मी फ्रॉम मैनली वेस्ट। तो चलते हैं आपके लिए रफी साहब की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं।

रफी और लता की आवाज का ब्यूटीफुल कृष्णा भजन आपने सुना। फरमाइश करने वाली थी मेनली वेस्ट से लक्ष्मी। हम चलते हैं आज फील्ड की ओर दोस्तों। फरमाइश है हमारे पास आज फील्ड से अनवर और शहरुल की ओर से। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्रा। आप सुन रहे हैं आप कितनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701। नॉमिनेट हो गए हैं 3:00।

0: सरस्वती चंद्रा और मुकेश लता जी की आवाज का सॉन्ग, बहुत प्यारा सा गीत जिसे फरमाइश किया था अनवर और शेरुल जो हमें सुन रहे हैं आज फिल्म में। फिलहाल दोस्तों आपका हमारा साथ रहेगा ठीक 3 बजे तक, आप सॉरी 5 बजे तक रेडियो विश्वानी आईएम आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं, दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका To win one of the fuel vouchers or shopping vouchers worth $100 every week. Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
0: चले हैं दोस्तों द गैप की ओर। जी हाँ, माउंट कूथा द गैप की ओर, जहाँ हमें सुन रहे हैं अरुणा ध्रुव और अरुणा आप दोनों की पसंद पर सुनते हैं अगला गीत।
8: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: की हर खुशी।
1: और आपने सुना अभिजीत की आवाज में ब्यूटीफुल सॉन्ग अरुणा ध्रुव की पसंद पर जो हमें सुन रहे हैं द गैप में। हम चलते हैं दोस्तों यूएसए सैक्रामेंटो यूएसए में हमें सुन रहे हैं सूजी नारायण। हेलो सूजी। और सूजी आज याद करिए अपने भाइयों को क्योंकि उन्होंने कल राखी पर अपने भाइयों का गीत मिस कर दिया लेकिन आज कैचअप कर रही है। तो सूजी अपने भाई को याद करिए कनाडा में सुनील को और कहना है उसका कि तीन भाई उनके साथ में आज नहीं है, उनको भी अपने दिल से याद कर रही है। और साथ साथ में उनके भाई है नंद किशोर और साथ में नंदलाल जो यहाँ लोगनली ब्रिस्बेन में रहते हैं, बहुत से लोग उन्हें जानते हैं, शायद सभी लोग उन्हें जानते हैं। तो सूजी नारायण फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए, चलते हैं आपकी पसंद पर सुनते हैं अगला गीत।

बहुत प्यारे से गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना राखी पर। सैक्रामेंटो यूएसए से सूजी नारायण की ओर से हमारे पास ए फरमाइश आई थी, और आज देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन हियर, नॉट थ्री, शी लॉस्ट टू ब्रदर्स, और आज वो अपने दो भाइयों को याद कर रही है, नंद कुमार फ्रॉम लोगन सिटी और सुनील इन कैनेडा, दो भाइयों को आज अपना प्यार और आशीर्वाद भेज रही है, और साथ साथ में सेंडिंग हर ऑल हर लव टू ऑल द ब्रदर्स फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। चलते हैं रेडियो विश्वानी पर, अगला गीत की फरमाइश हमारे पास है विजयन फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। आप सुनना चाहते हैं अगला गीत, सुनते हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज का गीत से फरमाइश करने वाले थे विजयन जो हमें सुन रहे हैं सैक्रामेंटो यूएसए में।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
0: तो चलते हैं ग्रीनिका सिडनी की ओर. दोस्तों हमारे पास है कृष्णा भजन की फरमाइश है रजेन और मालती प्रसाद की ओर से. आप दोनों के लिए अगला भजन.

और हमारे साथ शामिल हो गए थे, यानी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हमेशा की तरह ग्रीन एकर सिडनी में रजेन और मालती प्रसाद। थैंक यू वेरी मच सुजी नारायण फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए फॉर योर ब्यूटीफुल फीडबैक आउट देयर। हम चलते हैं रेड बैंक की ओर और जहाँ हमारा प्रोग्राम सुन रहे गंगा और गीता, आप दोनों के लिए अगला गीत।

सुना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म का नाम बफ मास्टर पदे पर शमी कपूर के लिए ऑलराइट वजबानी पर फरमाइश करने वाले थे इस गीत को गंगा और गीता फ्रॉम रेड बैंक। आप सुन रहे हैं रेडियो वजबानी 17.1 किलोहर्ट्ज़ पर हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से। यह शाम का सफर पौने चार बज चुके हैं दोस्तों। हमारे स्टूडियोज में हम चलते हैं एक बार फिर गैप की ओर और इस बार उन्होंने फरमाइश किया, किसने फरमाइश किया है, अरुणा और ध्रुव आप सुनना चाहते हैं कृष्णा भजन, तो आपके लिए लेटेस्ट कृष्णा सॉन्ग।

0: इस भजन को फरमाइश करने वाले थे ध्रुप और अरुणा फ्रॉम द गैप।
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियोज में बस 3 मिनट रह गए हैं 4 बजने में, शाम का सफर है। और शामिल हो गए हमारे साथ अगला गीत में मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया, यूएसए।

जी हाँ दोस्तों, इस कृष्ण भजन को फरमाइश करने वाले थे मैक्स प्रसाद जो हमें सुन रहे हैं कैलिफोर्निया यूएसए में। हम चलते हैं जीबंग की ओर। फरमाइश है हमारे पास जीबंग से टॉम मनीराम की ओर से। आप सुनना चाहते हैं संदेशी आती है।

तमारी स्टेज वक्त हमारे स्टूडियोज में 2 मिनट हो गए 4 बजकर।

0: आपने सुना सोनू निगम की आवाज में फिल्म बॉर्डर से लिवा गीत, जिसकी फरमाइश करने वाले थे जीबंग से टॉम मनीराम। हम चलते हैं एक बार फिर सैक्रामेंटो यूएसए से। फरमाइश है हमारे पास कामनी और ललिता गौतम की ओर से, एंजॉइंग द प्रोग्राम एंड हैविंग कॉफी। वैसे मेरा भी कॉफी टाइम हो गया यहाँ पर, तो आई थिंक मलेशिया भी आप दोनों पी लीजिएगा। चलते हैं आप दोनों की फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत।
1: रहे देखिए एक दिन प्यार।

0: धन्यवाद प्यारा संगीत दोस्तों, हमेशा आप रफी साहब की आवाज में सुनते हैं, लेकिन आज एक नए आवाज में आपने सुना जिसे फरमाइश करने वाले थे फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान, जाबिदा खान।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: तो देखिए समय की ओर देखा जाए दोस्तों, बस 25 मिनट होने वाले हैं 4 बजकर हमारे स्टूडियोज में, साथ है हमारा आपका सिर्फ अनदर हाफ एन आवर यानी कि 5 बजे तक। और समय की बात देखा जाए तो समय सबसे अनमोल दौलत है दोस्तों। पैसा कितना है या दुनिया जान सकती है, लेकिन आपके पास कितना समय बचा या कोई नहीं जानता। इसीलिए जिंदगी में पैसा कमाइए, लेकिन उसके साथ समय भी कमाइए, अपनों के लिए, मुस्कुराने के लिए, सुकून के लिए, और उन रिश्तों के लिए जो कल सिर्फ यादें बनकर रह जाते हैं। वक्त की कदर कीजिए, क्योंकि गुजरा हुआ समय ना दौलत वापस लाता है और ना दुआओं से वापस लाता है। आज को खुलकर जी लीजिए, क्योंकि असली दौलत समय तो है। तो चलते हैं अगली फरमाइश की ओर। हमारे साथ शामिल हो गए यानी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं एश ग्रोव एवेन्यू में रजीना चौधरी, आनंद चौधरी, आप दोनों के लिए बहुत प्यारा सा निर्गुण भजन हमारे आनंद अंकल की फरमाइश पर।

और 10:00 के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 5:15 बज चुके हैं। शाम का सफर रेडियो विस्पनी आप सुन रहे हैं, साथ है हमारा आपका आज ठीक 5 बजे तक।

और इसके साथ साथ दोस्तों आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी. आप सभी की पूजा सफल हो. कृष्णा आप सभी की रक्षा करें. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल फ्रॉम राधे कृष्णा.

के साथ साथ दोस्तों हम आपसे यही इजाजत ले रहे हैं, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट सैटरडे 1 PM से शनिवार मसी म्यूजिक पर। याद रखिएगा ठीक 5 बजे से आपके साथ हो जाएगी शशि चौखन, साथ जरूर दीजिएगा। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू यू।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ Authorized by the Queensland Government, Brisbane. ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 hectares ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ Authorized by the Queensland Government, Brisbane. ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। Queensland सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ तां जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
3: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
4: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ।
3: I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best, Viray. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए. डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक. जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ. और जानकारी के लिए विजिट करें DigiCellPacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

ज्ञान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

नमस्कार, आदाब, खैर मकदम। एक बार फिर से सताक्षी है आपकी फरमाइशों के साथ रेडियो प्रस्वानी 170 वाले अंबर। जी हाँ दोस्तों, आपकी फरमाइशें इस वक्त मेरे सामने एक लिस्ट के तौर पे हैं, एक टेबल के फॉर्म में सारी लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है और एक एक गाना मुझे एक एक नाम के साथ नजर आ रहा है जो आज यहाँ पर प्ले होने वाले हैं। और सच में आपका ये जो प्यार हम पर बरस रहा है, जो प्यार आप हमें दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और हम मतलब इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं जब आपके इतने सारे मेल्स हमें मिलते हैं, तब ये समझ में आता है कि यार आप कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे। तो हमें भी उस मोहब्बत की उतनी ही वैल्यू है। और वो सभी गाने जो आपने रिक्वेस्ट किए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप तक पहुंचाने की। और ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी है हमारे बाकी लिसनर्स से जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, कि अपने फेवरेट सॉन्ग्स को आप रिक्वेस्ट कीजिए और हमें बताइए कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। जी हाँ, आपके गाने, आपकी फरमाइश आप तक पहुंचाएंगे हम। और चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की, इस ट्रैक के साथ। आपकी फरमाइशें इस गाने के उस पार लेते हैं और देखते हैं कि आज की पहली फरमाइश किसकी है। सो स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्वानी, मेरे साथ यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए आपकी पसंद को मेरे साथ।

आज नोएडा से सबसे पहली फरमाइश है मेरे सामने और ये है पवनदीप की। पवनदीप कहते हैं, मैंने पिछले हफ्ते भी सताक्षी रेडियो ब्रिस्वानी पर अपनी फरमाइश भेजी थी और आपने शामिल की, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। पवनदीप, आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया और हमें इतना सारा प्यार दिया, हमें बताया कि आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और बिल्कुल हमें ऐसे ही लिखते रहिए। पवनदीप आगे कहते हैं कि आज फिर से मैं एक गाने की रिक्वेस्ट देना चाह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज भी ये गाना जरूर शामिल करेंगे आप। मुझे सुनवा दीजिए लिखे जो खत तुझे। इस पिक्चर का नाम मुझे नहीं पता है, आप अगर प्ले कर देंगे, आपके पास होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। पवनदीप जी, इस फिल्म का नाम सबसे पहले जान लीजिए, ये है फिल्म कन्यादान और शशि कपूर जी और आशा पारिक जी की ये फिल्म। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है और इसके सभी गाने बड़े ही लाजवाब हैं। ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इतना फेमस जो शादियों में अक्सर बजता है। आप सुनना चाहते हैं इस फिल्म का लिखे जो खत तुझे गीत, तो चलिए आपके नाम ये गाना प्ले कर रही हूँ, एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए मेरे साथ फरमाइशी गीत।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: 1701 पर एक बार फिर से आपके सताक्षी के साथ आज, और मेरे साथ सुन रहे हैं फरमाइशी गीत। जी हाँ, खास वो गाने जो आपकी पसंद पर हम एक बार फिर से आज रेडियो प्रस्वानी पर आप ही के लिए लेकर के आए हैं। और आप जब हमसे फरमाइश करते हैं तो यकीन मानिए बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए फरमाइश ना सिर्फ अपने ही करते हैं और बड़ा अपनापन सा फील होता है। और आपकी तो छोटी सी फरमाइश की आपकी पसंद के गाने प्ले कर दिए जाए, भाई इससे ज्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन वो लिसनर्स जिन्होंने अभी तक हमें अपनी फरमाइश लिखकर नहीं भेजी है, तो क्या हम ये समझ लें कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं या हमें अपना नहीं समझते हैं? तो भाई जल्दी से हमें लिखकर भेजिए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं फरमाइशी गीत में। और आप मुझे बता सकते हैं हमारे रेडियो प्रस्थानी के फेसबुक पेज या फिर रेडियो प्रस्थानी की वेबसाइट पर। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7905170728 पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ, और उसके बाद देखते हैं कि अगली फरमाइश हम किसकी लेकर आए हैं आपके लिए।

So, दोस्तों अगली फरमाइश फरमाइशी गीत में जो मेरे पास आई है वो है सोनिका जैन की। सोनिका जैन लिखती है, हाय डियर प्रेजेंटर, मैं रिसेंटली यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी पसंद का गाना भी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सुना था कि बहुत अच्छे अच्छे गाने सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को भी जरूर शामिल कीजिएगा। और ये मेरा पहला मेल है तो इसे जरूर शामिल करके मेरी पसंद का गाना प्ले कीजिएगा। मुझे 90s के गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे लिए साजन फिल्म से बहुत प्यार करते हैं प्ले कर दीजिए। जी बहुत ही खूबसूरत गाना आपने रिक्वेस्ट कर दिया है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, साजन फिल्म से। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे इस प्रोग्राम में आपकी फरमाइश में ही आपका पहला मेल है, तो लीजिए आपकी पहली पहली ख्वाहिश हमने पूरी कर दी है, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि इतना प्यार आपको किससे है। आइए, आपने इतने खूबसूरत अंदाज में हमें कहा है कि बहुत ही खूबसूरत गाना आपने

के, और म्यूजिक है नदीम श्रवण का। स्क्रीन पर सलमान खान और माधुरी दीक्षित। सो चलिए मैं प्ले करती हूँ आपके लिए इस गाने का फीमेल वर्जन, यानी कि अनुराधा पौडवाल की आवाज में, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।

0: लेकिन साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।

0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: पर फरमाइशी घी, जी आपकी फरमाइशें जो आपने हम तक पहुंचाई हैं उन्हीं फरमाइशों को इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं आप तक। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये शो आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने भी अभी तक हमें मेल नहीं किया है और हमें नहीं बताया है कि कौन से हैं आपकी पसंद के गाने, तो फटाफट से जनाब अपनी फरमाइशों को हम तक पहुंचाइए। हमें रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज और रेडियो प्रसवानी की वेबसाइट पर लिख भेजिए अपनी फरमाइशें। फिलहाल चलिए मेरी एक फरमाइश के साथ, यानी कि मेरी पसंद के गाने के साथ आगे बढ़िए और सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत, आपके साथ है सताक्षी।

0: परवना पादवा का अगला मेल मेरे पास आया है और ये कनाडा से लिखते हैं। परवना जी लिखते हैं कि
1: मैं 56 इयर्स का हो गया हूँ इस साल अप्रैल में और मुझे पुराने गानों का बहुत शौक रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि बहुत कम चैनल्स पे आजकल ओल्ड सॉन्ग्स, गोल्डन एरा के सॉन्ग्स प्ले होते हैं, हर चैनल पे ज्यादातर शोर रहता है, बहुत कम सुकून भरे गाने प्ले होते हैं और कुछ अच्छे गाने आप प्ले करते हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पर एक गोल्डन एरा का सॉन्ग मेरे लिए भी जरूर प्ले कीजिएगा। और ये मेरा पहला मेल है, अगर ये गाना प्ले होगा तो मैं आगे भी आपको जरूर अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजूंगा। थैंक यू सो मच। और आपने सुनना चाहा है दोस्त दोस्त ना रहा फिल्म संगम से, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। और जैसा कि आपने कहा कि आपकी पहली मेल है, तो लीजिए आपकी फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं। अब शर्त ये है कि आप हमें आगे भी जरूर बताते रहें कि आपके फेवरेट सॉन्ग्स कौन से हैं जिन्हें आप हमसे सुनना चाहते हैं। वेल, आज दोस्त दोस्त ना रहा मैं आपके लिए जरूर प्ले करूंगी और जैसा कि मैंने कहा ये है संगम फिल्म से और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, लिरिसिस्ट शैलेंद्र और इस गाने को अपनी आवाज दी है मुकेश ने, स्क्रीन पर राज कपूर। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को
0: और सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

0: beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
1: दोस्तों ये सफर है आपकी फरमाइशों का जिसे हम लेकर आए हैं आज आपके लिए रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर एक बार फिर से। वो गाने जो आपने रिक्वेस्ट किए हैं, आपने हमसे सुनने चाहे हैं, आज हम आपके लिए यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमें अपनी रिक्वेस्ट नहीं भेजी है तो हमें लिख भेजिए रेडियो प्रस्वानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। जी हाँ, अपना गाना, अपनी पसंद का गाना जो आप सुनना चाहते हैं और उसकी फिल्म का नाम हम तक पहुँचाइए। फिल्म का नाम भाई अगर नहीं याद हो पवनदीप की तरह तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम सही गाना आप तक पहुंचा पाएं। तो एंजॉय कीजिए अभी अगला ट्रैक और इसके उस पार देखेंगे कि अगली फरमाइश किसकी है। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से सताक्षी के साथ आप हैं फरमाइशी गीतों के एक और खूबसूरत और बेहतरीन सफर में। और मेरे पास अगली ईमेल है, ये मेल है इंडिया से और ये है शाजिया की मेल। शाजिया कहती हैं कि मेरे फियांसे जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, हमारी शादी होने वाली थी लेकिन एक एक्सीडेंट के चलते अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और काफी चोट भी उन्हें आई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये घाव कब तक भरेंगे, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि मैं ये शादी तोड़ दूं, लेकिन मैं ये शादी तोड़ने वाली नहीं हूं। मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूं और अपने इस पक्के इरादे को मैं एक गाने के तौर पे उन्हें बताना चाहती हूं। आप प्लीज ये गाना प्ले कर दीजिएगा। शाजिया, सबसे पहले तो आप बहुत हिम्मत वाली हैं और कहते हैं ना कि सच्ची मोहब्बत वही है जो मुसीबत में साथ ना छोड़े, और आप उसी जज्बे के साथ अपने फियांसे के साथ हैं। और बहुत दुआ है हमारी कि आपके फियांसे ही आपके हस्बैंड बने और एक दिन आप हमें ये कहें कि आपकी अब शादी हो गई है, और उसके लिए आप एक रोमांटिक सा गाना सुनें। वेल, आप एक बहुत प्यारा गाना सुनना चाहती हैं जो मुझे बहुत पसंद है सच में। इंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और फिर से मेरी एक दुआ कि आपके फियांसे जल्द स्वस्थ हो। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और रहिए सताक्षी के साथ दोस्तों।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आपकी फरमाइशों का कारवां हम लेकर आए हैं आपके लिए रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। फरमाइशी गीत आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, और आपकी फरमाइशों के नाम ये जो सफर है ये हम करते हैं। तो बिल्कुल, अगर आपने अभी तक आज तक हमें मेल नहीं किया है फरमाइशी गीतों में, तो जरूर अपना मेल हम तक पहुंचाइए। हमको जरूर बताइए कि वो कौन से गाने हैं जो आपकी फरमाइश के हैं और आप सुनना चाहते हैं। रेडियो प्रस्वानी आपका चैनल है, आपकी फरमाइश का हम जरूर ध्यान रखेंगे। आइए अभी एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते रहिए फरमाइशी गीत और रहिए सताक्षी के साथ।

0: फरमाइशी गीत जो है ये सफर हर उस जगह पहुंच रहा है जहां जहां पहुंचे हैं बॉलीवुड के गाने।
1: उत्तराखंड से मुझे मिला है अगला मेल पवन दीप का, और आप लिखते हैं रेडियो भूला मस्ती के सभी प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। मैं अरिजीत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं सिंगर भी हूँ, मैं उनके गाने गाता भी हूँ। प्लीज उनका एक गाना बातें ये कभी ना तू भूलना, इसे प्ले कर दीजिए। आपने जैसा कि हमें बताया कि आप गाते भी हैं भाई, आप सिंगर भी हैं, तो कभी हमें कुछ सुनाइए और हमें कुछ रिकॉर्ड करके भेजिए ताकि हम भी सुने कि आप कितना खूबसूरत गा लेते हैं। आपने सुनना चाहा है अरिजीत सिंह की आवाज में खामोशियां फिल्म से बातें ये कभी ना तू भूलना। अजीत गांगुली ने इसके म्यूजिक को कंपोज किया है और सईद करदारी के लिरिक्स हैं इसमें। तो चलिए एंजॉय कीजिए अभी इस ट्रैक को, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा गाना, और आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं। ये रहा बातें ये कभी ना तू भूलना।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings.
1: के साथ ये सफर है फरमाइशी गीतों का, और इस सफर को इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रह्मस्वानी 1701 AM पर। आप ये जरूर चाहते होंगे कि आपकी फरमाइश हम यहाँ पर प्ले करें, आप अपनी पसंद का वो गाना सुने जो शायद आप पूरे हफ्ते रेडियो पर नहीं सुन पाते हैं, हम प्ले नहीं कर पाते आपके लिए। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमें बिल्कुल लिख भेजिए अपनी फरमाइश, हम जरूर आपकी ख्वाहिश का ध्यान रखेंगे, आपकी पसंद का गाना जो है वो हम जरूर यहाँ पर प्ले करेंगे, क्योंकि ये सफर जो है ये बेसिकली आपसे है, आप ही का है और आपके लिए ही है। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके ज्यादा से ज्यादा मेल मुझ तक पहुंचेंगे, हालांकि पहुंच भी रहे हैं। और देखिए ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सारे मेल्स को शामिल करना मुश्किल हो जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें हफ्ते में दो दिन फरमाइशी गीतों को लेकर आपके लिए आना पड़े। ये तो भविष्य बताएगा, अभी फ्यूचर बताएगा कि आगे क्या करना है, लेकिन हाँ जितनी मेल्स हम ले पाते हैं कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लें। और अगर आपकी मेल कभी शामिल नहीं हो पा रही है तो अगले हफ्ते हमें जरूर कीजिए, हम बहुत खास ध्यान रख के उसे जरूर शामिल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ, सुनते रहिए सताक्षी के साथ रिचु ब्रिस्वानी पर फरमाइशी गीत।

0: राजस्थान हिंदुस्तान से आई है मुझे अगली मेल। राजन कुमार की ये मेल है। आप लिखते हैं कि प्रेजेंटर को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और
1: आप लिखते हैं कि रेडियो प्रसवानी पर फरमाइशी गीत मैंने सुनना शुरू किया है और बाकी सभी चैनल से ये चैनल जो है ये अलग है। लिसनर्स की फरमाइश का बहुत आप लोग ध्यान रखते हैं और मेरा खासकर ये पहला मेल है।
0: यहाँ इंडिया में ये जब सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि वहां पर भी हमारे बॉलीवुड के गाने बजते होंगे। बड़ा जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे आश्चर्य हुआ था इस बात का कि हमारे बॉलीवुड के गाने इतने दूर तक जाते हैं। और तो प्लीज मेरी पसंद का गाना भी आज जरूर प्ले कीजिएगा। आप सुनना चाहते हैं राजन जी फूल और कांटे फिल्म से धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, और ये गाना हम आपके लिए जरूर प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच कि आप इतनी शिद्दत से हमें सुनते हैं। और जी हाँ, बॉलीवुड के जो गाने हैं उनके प्रेमी पूरी दुनिया में बसते हैं और जरूर यहाँ पर बॉलीवुड के गाने न सिर्फ आपके लिए बल्कि सबके लिए, जहां जहां भी बॉलीवुड के गाने सुने जाते हैं वहां तक हमारी आवाज आई होप के पहुंच रही है और ये गाने पहुंच रहे हैं। और जैसे कि आपने सुनना चाहा है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, जी हाँ फिल्म फूल और कांटे से है ये गाना। समीर के लिरिक्स हैं, नदीम श्रवण का म्यूजिक है इस गाने में, और कुमार सानू और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाजें, स्क्रीन पर अजय देवगन और मधु।
1: स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसानी सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज।

0: रिंग करें प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430-228-009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: आपकी फरमाइशों का सफर, फरमाइशी गीत आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ, और इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ कुछ ऐसे गाने जो मुझे लगता है कि आपकी फरमाइशों से जुड़े हुए हैं। हर एक मेल हम शामिल नहीं कर पाते, लेकिन वो सारे गाने जो आपने हमें भेजे हैं हम उनका ख्याल रखते हैं और उन्हें हम जरूर शामिल करते हैं। सो ऐसे ही एक और गाने के साथ अभी बढ़ूंगी आगे। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसारणी सुनते रहिए मेरे साथ फरमाइशी की।

So, चलिए इस खूबसूरत से गाने के बाद एक बार फिर से देखते हैं कि भाई अब किसका नाम हम लेने जा रहे हैं और किसकी पसंद का गाना जो है वो अगला रेडियो प्रस्थान पर प्ले होने जा रहा है। सो अगली मेल जो है वो है जस्मीन कौर की। जस्मीन लिखती है कि रेडियो प्रस्थान के मुझे सभी प्रोग्राम्स बहुत पसंद हैं और मैं रेडियो प्रस्थान की रेगुलर फैन हूँ। अभी हाल ही में आपने फरमाइशी गीतों का सफर शुरू किया है जिसका मुझे अंदाजा पिछले हफ्ते ही हुआ क्योंकि मैं नहीं सुन पा रही थी और मुझे नहीं पता था कि इस नाम का कोई प्रोग्राम चल रहा है। तो ये मेरी पहली मेल है। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट संडे मेरा ये गाना जो है मेरी पसंद का गाना वो जरूर प्ले होगा। जस्मीन जी, ये मेल मुझे बहुत पहले मिल गई थी। इनफैक्ट जब लास्ट प्रोग्राम प्ले हो रहा था लास्ट संडे को तब ये मेल मेरे पास आ गई थी और देखिए हमने जरूर शामिल किया है। टोरंटो से आपने हमें मेल की है और आप रेडियो प्रसारणी की रेगुलर फैन हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब आप हमें रेगुलर सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई है जो हमें सुन रहा है, हम बस यूं ही रेडियो पर बोल नहीं रहे। जब आपके मेल फरमाइशी गीतों में आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने सारे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमें जानते हैं, सिर्फ एक देश से नहीं विश्व के कोने कोने से आप हमें भेज रहे हैं मेल्स, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सुनना चाहती हैं बहुत ही प्यारा गाना, मेरा भी बहुत ही फेवरेट गाना है ये, अखियों के छलोखों से मैंने देखा जो सांवरे। हेमलता जी की आवाज में है ये गाना और लिरिक्स और म्यूजिक दोनों ही रविंद्र जैन साहब का। चलिए बिना देर किए क्योंकि मैं भी इस गाने के लिए और वेट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं प्ले करूंगी आपके लिए ये गाना अखियों के झरोखों से। टाइटल ट्रैक है इसी फिल्म का। एंजॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: की फरमाइशों का ये खास सफर फरमाइशी गीत आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर सताक्षी के साथ। और लैनवुड से जॉन एलन का आया है मेरे पास अगला मेल, और आपने ज्यादा कुछ ना लिखते हुए अपना सॉन्ग सीधे सीधे रिक्वेस्ट कर दिया है। आप सुनना चाहते हैं फिल्म सिलसिला का गीत देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। जॉन आपके नाम ये गाना हम जरूर प्ले करेंगे, आपने हमें मेल किया इसके लिए थैंक यू सो मच। और सिलसिला फिल्म से है ये गाना जिसको जावेद अख्तर ने लिखा है, शिव हरि का म्यूजिक है और अमिताभ बच्चन रेखा स्क्रीन पर हैं। इस गाने की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है जॉन जी? इसकी खूबसूरत बात यह है, मैं अपने लिसनर्स को भी बता दूं कि देखा एक ख्वाब जो ये सिलसिले हुए से जावेद अख्तर साहब ने लिखा है। और आपको पता है जावेद जी ने जो पहला गाना अपनी लाइफ में लिखा है वही ये गाना है। इसी गाने से उन्होंने सॉन्ग्स लिखने की शुरुआत की थी, इसके पहले वो स्क्रिप्ट राइटिंग किया करते थे सलीम खान के साथ मिलके। सो ये है इस गाने की ब्यूटी।
1: एंजॉय कीजिए इसे खास आपके लिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ फरमाइशी गीत।

तो दोस्तों ये था आज फरमाइशी गीतों का हमारा और आपका एक और खूबसूरत सा साथ। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आज भी आपको ये किस्से कहानियां और ये गाने जरूर अच्छे लगे होंगे। तो कुछ बेहतरीन गानों के साथ, कुछ आपकी फरमाइशों के साथ, कुछ हमारे फेवरेट गानों के साथ हम आगे भी फरमाइशी गीतों के सफर में आपसे मिलते रहेंगे। अगले संडे को आपसे फिर से इसी सफर में होगी मुलाकात, तो हमें सुनना मत भूलिएगा। आज के सफर से अब इजाजत चाहूंगी, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त है। तो चलिए अगले हफ्ते मिलने के वादे के साथ आज लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।

ये कैसा नशा है, मैं किस खुमार में हूँ। तू आकर भी जा चुका है और मैं इंतजार में हूँ। आदाब नमस्कार जनाब, मैं तो बस अभी भी आया हूँ। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपसे हर हफ्ते मिलना आप तो एक रिवायत की तरह हो गया है। जब आप और मैं पूरे हफ्ते जिंदगी की कश्मकश से जूझते रहते हैं तो दिल करता है काश सुकून के दो पल मिल जाए। तो जामीन सुर और सांस तैयार है, अपने दिल पर हाथ रखिए और इस सुकून भरे सफर के लिए तैयार हो जाइए। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर निले। आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो ब्रिस्वानी और ये सुरीला सफर है गजलों का, जिसे हम कहते हैं कारवाए गजल। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मोहब्बतों में अजब है दिलों का धड़का सा, कि जाने कौन कहां रास्ता बदल जाए। मिले हैं यूं तो बहुत, आओ अब मिले यूं भी, कि रूह गर्मी इन्फास से पिघल जाए। हर एक लहजा यही आरजू यही हसरत, जो आग दिल में है वो शीर में भी ढल जाए।

अजाब ये भी किसी और पर नहीं आया कि एक उम्र चले और घर नहीं आया। इस एक ख्वाब की हसरत में जल बुझी आंखें, वो एक ख्वाब की अब तक नजर नहीं आया। आदाब ख्वातिनो हजरात, मैं आपका रेडियो हम सफर निला एक बार फिर से हाजिर हूं। हमारी जिंदगी कई रिश्तों के दायरों में बंधी होती है। उन रिश्तों में एक बड़ा ही पाक रिश्ता होता है दोस्ती का। हम अपने रिश्तेदार तो चुन नहीं सकते, पर हम दोस्त चुन सकते हैं जिनके साथ हम बेपर्दा होकर अपने दिल का हाल बयां कर सकते हैं। पर जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। कई बार हम अपनी तरफ से जिसे अपना हमदर्द समझते हैं, वो भी कुछ ऐसा कह जाता है कि दिल जार जार हो जाता है। और ऐसे में मैं ये सोचता हूं कि नुकसान किसका हुआ, उस दोस्त का जिसने दगा दिया, या उसका जिसने पूरी शिद्दत से रिश्ता निभाया। तभी तो दिल कह उठता है कि हर एक बात को क्यों चुपचाप सुना जाए, कभी तो हौसला करके ना कहा जाए। सुनते रहिए कारवाई गजल, पेशे खिदमत है अगली गजल आप सभी के लिए। करें तो किससे करें ना रसाइयों का गिला, करें तो किससे करें ना रसाइयों का गिला, सफर तमाम हुआ हम सफर नहीं आया, दिल की बात बदन की जबां से कह देते, ये चाहते थे मगर दिल इधर नहीं आया। अजीब ही था मेरे दौर गुमराही का रफीक, बिछड़ गया तो कभी लौट कर नहीं आया।

उस बस्ती से छूटकर तो हर चेहरे को याद किया, जिससे थोड़ी सी अनबन थी वो अक्सर याद आया है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल रेडियो ब्रिस्वानी पर। ऐसा कहते हैं जब आंख बंद कर दिल पर हाथ रखते हैं तो उसका चेहरा सबसे पहले जहन में आता है, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पर एक बात बताता हूँ आपको, आमतौर पर जिसके साथ अनबन होती है आप उसे भी उतना ही याद करते हैं जितना किसी को प्यार में करते हैं, उसकी हर बात की तरफ नजर रखते हैं। क्योंकि हुजूर, अनबन भी तो उन्हीं से होती है जिनसे प्यार आप करते हैं, क्योंकि जहां प्यार है वहीं तकरार भी है। उनके रूठने से जिंदगी में एक खालीपन सा आ जाता है ना, कुछ कमी सी महसूस होने लगती है, कुछ खलिश रह जाती है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है, आंखों में ख्वाब भी है, लबों पर हंसी भी है। दिल को नहीं है शिकायत किसी के साथ, यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। फिलहाल मैं आपके साथ हूं, आपका रेडियो हम सफर नीले, और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, आप रेडियो ब्रिस्वानी पर हैं। अजमतों के बोझ से घबरा गए, सर उठाया था कि ठोकर खा गए। कैद खाने से रिहाई यूं मिली, हौसले जंजीर को पिघला गए। एक नई उम्मीद के झोंके मेरे पांव के छालों को फिर सहला गए। उन बुतों में जान हमने डाल दी, दश्त तन्हाई में जो पत्थरा गए।

मोहब्बत के लिए खूबसूरत होने की कैसी शर्त, इश्क हो जाए तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। ये बात आपने भी पहले सुनी होगी, पर कभी आपने इस पर गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान को जब प्यार हो जाता है तो पूरी कायनात खूबसूरत लगने लगती है। मुझे लगता है कि जब आप खुश होते हैं, किसी दूसरे शख्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, अपने आप में ज्यादा गुम रहते हैं, तब आप किसी भी शख्स की बुराई या कमियों को बड़ी आसानी से दरकिनार कर देते हैं। जजमेंटल नहीं होते आप तब, क्योंकि आप दिल से खुश होते हैं। इसलिए जनाब, मेरा कहना मानिए, अपनी जिंदगी से मोहब्बत कीजिए, फिर देखिए ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी। वरना अभी जो पल है उसे खो देंगे और जिंदगी भर उसे खोजा करेंगे। सुनते रहिए कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, महफिल में आज सबकी निगाहों में छा गया। कल तक तो इस हुजूम में मेरा कोई न था, लो आज हर कोई मुझे अपना बना गया। आता नहीं था कोई परिंदा भी आसपास, अब चांद खुद उतर के मेरी छत पे आ गया। जो दर्द मेरी जान पे रहता था रात दिन, वो दर्द मेरी जिंदगी के काम आ गया।

अनकही बातों को कहने से मिलेगा भी क्या, मेरा महबूब तो पत्थर है सुनेगा भी क्या। किस लिए करते हो तामीर हवाओं में महल, कोई ताहश्र जमाने में रहेगा भी क्या। गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, लेकिन अफसोस कोई इसको पढ़ेगा भी क्या। आप सुन रहे कारवाई गजल, कुछ बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दीजिए। जिंदगी तो एक धुआं है, सब फना हो जाएगा। आंखें बंद होने से पहले या दोस्त चल थोड़ी गुफ्तगू कर ले, वो बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दे, बयां कर दीजिए जो दिल में है। क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस जिद की बात है। एक नादा सा दिल और ढेरों जज्बात है। जज्बात बयां करना, अपने दिल की बात कह देना बड़ा खूबसूरत है, पर उससे भी खूबसूरत वो एहसास है कि कोई है जो हमारी बात को और हमारे जज्बात को समझ रहा है, हमारी बातों के अधूरे सिरों को जोड़कर अनकही बात समझ जाए, खामोशी से बातें चुन सके और उनकी डोरी बनाकर आपकी तारीफ कर सके। मैं आपकी हर अनकही बात को समझ जाता हूं, इसीलिए कारवाई गजल में आपके लिए गजलों और बेहतरीन नगमों का तोहफा लेकर आता हूं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी पर गजल बहार, मैं हूं नीले आपके साथ।

कभी न कभी हर शख्स के जीवन में ये दौर आता होगा जब वो रोशनी से मुंह छुपाकर अंधेरे में चैन पाता होगा। मुश्किल दौर हर शख्स की जिंदगी का वो हिस्सा होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। वैसे देखा जाए तो हर शख्स की फितरत होती है कि वो हर पल में जिंदगी तलाश करता है, खुशी तलाश करता है। लेकिन जिंदगी खुशी के लम्हों के साथ गम के लम्हे भी समेटे हुए होती है, और गम के लम्हे ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका हमदर्द कौन है, कौन है जो आपका हमसाया है। वो तब भी आपका साथ देता है जब आपका खुद का साया भी आपके साथ नहीं होता। ऐसा दोस्त, ऐसा साथी जिसे भी मिल जाए, उस पर परवरदिगार की रहमत होती है। अपनी नजर से उसने गिराया कहां कहां, जिसको इधर उधर से उठाया कहां कहां। घर में रहें या घर से हों बाहर, यहां वहां नजरों का नीर हमने छुपाया कहां कहां। ताउम्र हर सफर में दिया साथ किस तरह, अफसोस जिंदगी ने सताया कहां कहां। अब तो इसी मकाम से ये देखना भी है, चलता है मेरे साथ मैं साया कहां कहां।

अनजाने हादसात का खटका लगा रहा। नींद आ रही थी रात मगर जागता रहा। वो सिर फिरी हवा थी आई गुजर गई, एक फूल था जो दिल की तरह कांपता रहा। आप सुन रहे कारवाई गजल, मैं हूं नील आपके साथ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान को हर बात की जल्दी क्यों होती है? जब छोटे होते हम तब बड़े होने की जल्दी होती है, पढ़ते हैं तो कमाने की जल्दी होती है, कमाने लग पड़ते हैं तो जिंदगी को अगले मुकाम पर ले जाने की जल्दी होती है, और सच कहिए तो इस जल्दी जल्दी में जिंदगी जीना कहीं पीछे छूट जाता है। और यकीन मानिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो जब पूछा जाता है कि क्या चाहिए तो खुदा से बचपना मांग लेते हैं हम। कैसी अजीब सी राय जिंदगी भी, जो गुजर गया उसे तलाश करती है और जो है उसकी कदर नहीं करती। इस महफिल की शमा को जलाए रखते हुए अगली गजल और नगमे पेश करते हुए आपसे कहूंगा कि बस मैं यूं गया और यूं आया। तब तक ये अर्ज किया आपके लिए कि मैं क्या था, शाखे जर्द का एक बरगे खुश्क तर, निकला जो आंधियों से तो शोलों से जा मिला, मेरा ही रूप था जो पसे पर्दाए वजूद, नफरत से सारी उम्र मुझे देखता रहा, तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, मत पूछ मुझसे अब मेरे दामन में क्या रहा, पानी के आर पार निगाहें न जा सकी, दरिया एक और भी तहे दरिया छुपा रहा।

प्यार कभी एक तरफा होता है ना होगा, दो रूहों के मिलन की जुड़वां पैदाइश है। ये प्यार अकेला नहीं जी सकता, जीता है तो दो लोगों में, मरता है तो दो लोगों में। आप हैं अपने रेडियो हमसफर निले के साथ। वैसे देखा जाए तो एक तरफा प्यार भी प्यार ही होता है, उसमें भी तड़पन होती है, दर्द होता है। लेकिन एक बात जरूर है, वो शख्स हमेशा खुश दिखना चाहता है, वो जिसे चाहता है उसे जताना चाहता है कि उसके साथ होने से कितनी खुशी मिलती है उसे। प्यार में रूठना, मनाना, तकरार होती है, पर एक तरफा प्यार में तकरार की जगह नहीं होती। दिल की बात हो, इजहार हो, इकरार हो, सभी बातों को संगीत के जरिए बखूबी बयां किया जा सकता है ना। संगीत में वो जादू है जो हर जख्म पर मरहम का काम करता है, हर टूटे दिल का सहारा बन जाता है संगीत। तो अब इस सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं, सुनते रहिए कारवाई गजल। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, वो पिछली रुत के साथी अब के बरस मैं तन्हा हूं। तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुनता हूं, मुझसे आंख मिलाए कौन मैं तेरा आईना हूं, मेरा दिया जलाए कौन मैं तेरा खाली कमरा हूं। तू जीवन की भरी गली मैं जंगल का रास्ता हूं, अपनी लहर है अपना रोग दरिया हूं और प्यासा हूं, आती रुत मुझे रोएगी जाती रुत का झोंका हूं। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं।

अब आता नहीं मजा अफसाना ए गम सुनाने में, हमको खुदा से काम आ पड़ा आखिरी जमाने में। मंजिले इश्क को दरकिनार कर बेवफा रकीब के संग, रात गुजारी उसे मिलती अबद हमारे गम के पैमाने में। ख्वातीनों हजरात, आज मैं आपको अपनी एक मजेदार आदत के बारे में बताता हूं। मैंने कई लोग देखे हैं जिन्हें कई तरह की चीजें इकट्ठी करने का शौक होता है। कई बार पुरानी चीजों को काफी लोग जमा करते हैं, अपने कलेक्शन को बढ़ाते हैं। मुझे भी कुछ इकट्ठा करने का शौक है। मैं लम्हे इकट्ठे करता हूं, वो लम्हे जिनमें प्यार है, वो लम्हे जो प्यार से दोस्तों के साथ बिताए, सही मायने में जिए, कुछ अपने अपनों के साथ जिए, वो सब लम्हे मैं अपने दिल की संदूक में संजो कर रखता हूं। और जब भी अकेला होता हूं, अपनी इस लम्हे की संदूक को खोलता हूं और खो जाता हूं उन बातों में, उन लोगों में जो दिल के बड़े अजीज हैं, साथ ही मेरे उन लम्हों का हिस्सा हैं, एक खूबसूरत हिस्सा। मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूं शायद। आप बने रहिए रेडियो बिजवानी के साथ और सुनते रहिए कारवाई गजल निले के साथ। ये जानकर भी कि हमने मौत को गले लगा रखा है, खुदा मस्जिद में बैठा रहा आया नहीं हमारे आशियाने में। एक मुद्दत लगी मोहब्बत की जिस आग को सुलगाने में, उसे आया मजा झटके से बुझाने में। मेरे पांव को जो कांटे रंग न सके, उससे रंज कैसा, उम्र बीती जोशे इश्क को ये बात समझाने में।

किनारा मिला जो किनारा नहीं था, बहाना था कोई सहारा नहीं था, यही एक दिल जिसको समझे थे अपना, न जाने किसका था हमारा नहीं था। आप सुन रहे कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। तभी कहते हैं कि जब कोई सामने से इग्नोर करने लगे या दिल कुछ और जवाब देने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि जिंदगी की राह में थोड़ा मुड़ने का टाइम आ गया, रुक कर सोचने का टाइम आ गया। वैसे भी जल्दी करके कोई क्या पा लेगा, थोड़ा रुक कर चलें तो धोखा शायद कम मिलेगा। अपनी किस्मत पे नाज करते गुरूर होता, गर उनके लबों से हमारा मस्कूर होता। गरचे मैंने छुपाया था राज़े दिल तुमसे, डर था तेरी निगाह में ये ना कसूर होता। कहना था पर न कहा इसमें खता मेरी थी, कहता दर्द हिजर भी जो न मजबूर होता।

जागे हैं देर तक, हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे ना हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, में हूं आपके साथ। हर शख्स की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब उसकी जिंदगी में ख्वाब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ख्वाबों से भरी जिंदगी में बड़ी सच्चाई होती है, बड़ी रूह होती है, बड़ी सोलफुल होती है ये जिंदगी। प्यार इंसान को ख्वाब देखना सिखाता है, ख्वाब की तामील हो ना हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि होठों पर लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। बेहतर है कह दें अपने दिल की बात तो सुकून मिल जाए। नहीं, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, काश मैं शक्ल सूरत में थोड़ा और होता। खुदाया क्या हम न पाते अपनी मोहब्बत को, अगर हमें अपनी वकालत का शऊर होता। हम तुम मिल ही जाते किसी मोड़ पर एक रोज, जो इश्क में वसलत और कुर्ब का दस्तूर होता। है आलम में रंग नए पुराने यादों के, तुम भी होते परेशान तो मजा जरूर होता। बहुत तड़प तड़प के मैंने यह गजल लिखी है, काश मेरी किस्मत में जमाले हूर होता।

जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिलें। जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिलें, किसी को जी भर के महसूस करना भी मोहब्बत है। आप और हम जुड़े हुए हैं प्यार के बंधन में। देखा जाए तो प्यार और अनुराग में थोड़ा अंतर होता है। अनुराग में पैशन होता है, चीज को अपना बना लेने की जिद होती है। प्यार में बंधन नहीं होता, जिद नहीं होती। इसीलिए मेरा और आपका रिश्ता पाक है, क्योंकि इसमें किसी तरह की जिद नहीं है, सिर्फ अपना बना के रखने की जिद नहीं है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। ये सफर अब मुकम्मल होने को है। फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात अपने रेडियो हम सफर निले से। दीजिए मुझे इजाजत, बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। लेकिन जाते जाते कहूंगा कि कल की सोचो तो भली ही सोचो, सोच अच्छी है तो अच्छा होगा। रब्त का फल है, जरा सब्र रखो, वक्त के साथ ही मीठा होगा। एक ही शर्त पे बांटूंगा खुशी, तेरे गम में मेरा हिस्सा होगा। मेरी कोशिश है अमल उस पे करूं, मैंने गजलों में जो लिखा होगा। खुदा आपका मुहाफिज रहे। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। इह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
3: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
6: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
5: अरे वाह, इनका पता बताना।
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: तेरा। यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: आएगा

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3633

3630-5438, 3630-5438, या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660.

ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierticket.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बन द्वारा अधिकार।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
0: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 38 1360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर आप हैं इस नई सुबह आपकी सताक्षी के साथ, और आज से एक नए सफर की, आज के दिन के साथ नई शुरुआत, जीवन आधार। जी हाँ, इसी कार्यक्रम में आज से होगी आपसे मुलाकात। जीवन का आधार वो ईश्वर, परमात्मा, वाहेगुरु, ईसा मसीह, आप उसे जो भी नाम दे दे वो है, और आपके जीवन की नैया को पार लगाने वाला भी वही है। तो चलिए उस खुदा की, उस ईश्वर की, उस परम पिता परमेश्वर की, उस सच्चे बादशाह की करते हैं आज एक बार फिर से वंदना, जीवन आधार में सताक्षी के साथ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज भगवान से है। तुम ईसा कहो वो वाहे गुरु, हम सब की अरज अल्लाह से है। कितनी सच बात है ना दोस्तों, हम सब अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। लेकिन आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, उस धर्म को मानने के पीछे है एक ही मकसद, अपनी प्रार्थना को उस शक्ति तक पहुंचाना जो हमारे हिसाब से इस संसार का निर्माण कर रही है, उसे चला रही है। और उसी शक्ति की, उसी सर्वशक्तिमान की हम प्रार्थना करते हैं हर सुबह, अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग नामों से। लेकिन नाम चाहे कुछ भी दे दीजिए, आपकी प्रार्थना एक ही है, उस शक्ति से है जो ये दुनिया चला रही है, और उसी शक्ति को समर्पित है यज्ञ लगाना। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

जीवन आधार रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं और इस आधार में, जीवन के आधार में हम अपने ही जीवन को ढूंढने की आज इस नई सुबह एक कोशिश कर रहे हैं। आगे ये कोशिश जारी रहेगी। हमें सुनते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

के साथ जोड़ते हैं। जब तक आप में मैं जिंदा रहता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें उस शक्ति को पा नहीं सकते, और कितना भी आप दुआ मांग लें, आप प्रार्थना कर लें, आप अरदास लगा लें, लेकिन आप अपनी आवाज उस तक पहुंचा नहीं सकते हैं। उसकी आवाज सुनने का और अपनी आवाज उस तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, अपने मैं को मिटा देना। तो मिटा दीजिए अपने मैं को और ढूंढ लीजिए उस सर्वशक्तिमान को। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

रेडियो बृसानी 1701 AM पर जीवन का आधार जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ और हम इस जीवन आधार के माध्यम से जीवन के ही सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए गुरुवाणी के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए रेडियो बृसानी पर हमारे साथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल मूरत अजनी सभम गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसे भी सच सोचे सोचे ना होवे जो सोची लाख बार छुपे छुप ना होवे यानी एक ही ईश्वर है और उसी का नाम सच है वही सबको बनाने वाला है उसकी कोई मूरत नहीं है वो किसी का दुश्मन नहीं है जन्म मरण से दूर है और अपनी सत्ता कायम रखने वाला है ऐसे ही परमात्मा को गुरु नानक जी ने अकाल पुरख कहा है जिसकी शरण में गुरु के बिना जाना संभव नहीं है आइए उसी ईश्वर को नमन करते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये था आज हमारा आपका आज की सुबह साथ। कल इसी साथ को लेकर आगे भी साथ साथ चलेंगे। और अपना जो रिश्ता है वो ईश्वर से जोड़े रखिए। उस शक्ति को जिसमें भी आप जिस भी नाम से माने विश्वास करते रहिए, क्योंकि वही है जिसने आपको थामा है, आपके अपनों को थामा है। नमस्कार।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
8: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रेस सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रेस सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते अदाब, सत श्री अकाल जी। नया दिन, नई एनर्जी और नई पॉसिबिलिटी के साथ आप सब सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में आपके अपने दोस्त आरजे जानी जैन को। प्रोग्राम चाने के सफर में मंडे है, यानी कि आज सोमवार है, और अगर मंडे को देखकर आपका मूड कह रहा है ना कि बस वीकेंड वापस आ जाए, तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज हम मंडे को भी बनाएंगे फंडे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग एक स्माइल के साथ, बिकॉज समटाइम्स एक छोटी सी स्माइल पूरे दिन का ना मूड चेंज कर देती है। तो चलिए फिर करते हैं अपनी इस मॉर्निंग वाइब को हैप्पी हैप्पी शुरू इस प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, अपने इस प्रोग्राम यानी कि चांदनी के सफर में आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे न्यूज सेगमेंट, एंटरटेनमेंट सेगमेंट, बहुत सारी गॉसिप्स और बहुत सारी बातें यहाँ पे शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, होगी तो सब चीजें यानी कि न्यूज आप सभी को अपडेट मिलने सुनने को जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे पहले अगर हम मंडे के रिमाइंडर को याद करें तो दोस्तों, हर मंडे को ना मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस एक स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी और ये फीलिंग चाहिए होती है, जो कि होती है कि आई कैन हैंडल दिस, आई कैन डू इट। जी हाँ, आज जो भी आपके सामने है लाइक वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस या फिर पर्सनल गोल्स, दोस्तों सबको ना एक साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और कोशिश भी मत कीजिएगा। कहते हैं ना, वन स्टेप एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम। जी हाँ, और याद रखिए दोस्तों, आपको परफेक्ट डे नहीं चाहिए, बस एक पॉजिटिव बिगनिंग चाहिए। और पॉजिटिव बिगनिंग कैसी होगी, अगर आप एक एक स्टेप और एक एक काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करेंगे। सो दोस्तों, शुरुआत करेंगे एक प्यारे से विचार के साथ, और आज का विचार है कि डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद समवन एल्स चैप्टर 20। यानी कि हर किसी की जर्नी दोस्तों अलग होती है, किसी की स्पीड फास्ट है, किसी की स्लो है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप रुक नहीं रहे। सो ब्रिस्बेन कीप मूविंग। आइए फिर इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है ब्रिसवानी न्यूज अपडेट का, जहां पर मिलेगी आपको इम्पोर्टेंट हेडलाइन शॉर्ट और सिंपल अंदाज में। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वींसलैंड की। सबसे पहले क्वींसलैंड की इम्पोर्टेंट अपडेट की अगर बात करें तो 31 अगस्त यानी कि आज से ही ई बाइक और ई स्कूटर रूल्स में बड़ा चेंज लागू हो रहा है। नए रूल्स के मुताबिक 16 साल से कम एज का जो राइडर्स है वो सोलो ई बाइक या फिर ई स्कूटर नहीं चला सकेंगे और सोलो राइडिंग के लिए एलिजिबल राइडर्स को ड्राइवर्स लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो पेरेंट्स और यंग राइडर्स रूल्स को जरूर चेक कर लीजिए और रोड सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिए। जानेंगे थोड़ी ही देर बाद और अपडेट, आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिसवानी में।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो ब्रिसवानी में। तो अब क्वींसलैंड से एक अपडेट यानी कि एक न्यूज आ रही है जो कि सैड न्यूज है। क्वींसलैंड से एक सैड अपडेट की जो सामने आई है वो ये है कि एक 13 साल का लड़का ई स्कूटर क्रैश में मारा गया और ये इंसिडेंट जो है वो चाइल्डर एरिया में हुआ था। इसीलिए दोस्तों एक बार फिर से रिमाइंडर है, चाहे ई बाइक हो या फिर ई स्कूटर, हेलमेट, रोड रूल्स और सेफ्टी को कभी इग्नोर ना करें। वहीं पर अगर हम ब्रिस्बेन की बात करें तो ब्रिस्बेन में फेडरल पॉलिटिक्स भी हेडलाइंस में है। प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनिस ने भी संडे को ब्रिस्बेन में लेबर डेलीगेट्स को एड्रेस किया है, जहां पर उन्होंने वन नेशन के रीसेंट इलेक्ट्रोल गेन्स और फ्यूचर पॉलिटिकल चैलेंजेस पर बात की है। आइए इसके चलते बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक। वन नेशन की रीसेंट इलेक्ट्रोल गेन्स और फ्यूचर पॉलिटिकल चैलेंजेस पर बात की है। आइए इसके चलते बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों अब टाइम है उस सेगमेंट का जिसका होता है सबको बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, वो है एंटरटेनमेंट गॉसिप। क्या चल रहा है बॉलीवुड में, कौन बना हुआ है हेडलाइंस का स्टार, तो चलिए फिर जल्दी से देखते हैं। यश की फिल्म टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है। दोस्तों फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 255 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक चौथे दिन तक ये दृश्यम 3 के लाइफ टाइम कलेक्शन से भी आगे निकल गई। तो यश फैंस के लिए दिस इज डेफिनेटली अ सेलिब्रेशन मोमेंट। जी हाँ, वहीं पर अगर हम एक्ट्रेस समंथा रुत प्रभु की बात करें तो उनकी लेटेस्ट पिक्चर्स सोशल मीडिया पर अटेंशन ग्रैब कर रही है। एक्ट्रेस अपनी प्रेगनेंसी फेज की फोटो शेयर कर रही है और फैंस उनके बेबी के नाम तक सजेस्ट कर रहे हैं। समंथा ने भी फैन के बेबी नेम सजेशन पर क्यूट रिएक्शन दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस का एक्साइटमेंट क्लियरली नजर आ रहा है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रसवानी। सो दोस्तों, मिर्जापुर फैंस के लिए भी एक्साइटिंग न्यूज है। मिर्जापुर द मूवी को CBFC सर्टिफिकेट मिल चुका है और फिल्म का रन टाइम 3 hours 17 minutes बताया जा रहा है। मतलब कि गुड्डू और कालीन भैया की स्टोरी जो है वो देखने के लिए प्रॉपर लॉन्ग मूवी एक्सपीरियंस रेडी है। तो दोस्तों, ये थी आज के एंटरटेनमेंट दुनिया की गर्मा गर्म अपडेट्स। और गॉसिप का रूल सिंपल है दोस्तों, सुनना जरूर लेकिन हर रूमर्स को ना सच मत मानना। अब गॉसिप हो गया, म्यूजिक की बारी है। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो ब्रसवानी।

हां जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। सो ब्रिस्बेन, याद रखिए, आपका मंडे ना आपके पूरे वीक का मूड डिसाइड नहीं करता। आज अगर मॉर्निंग स्लो है तो आफ्टरनून बेटर हो सकती है, और अगर आज कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो भाई कल एक फ्रेश चांस है। जी हाँ, स्माइल रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चांदनी जैन, और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन में, जहाँ पे आप सभी शो चांदनी जैन के साथ सुन रहे हैं चांदनी का सफर। और इस सफर में हमने बहुत सारी बातें की है, एंटरटेनमेंट, न्यूज अपडेट्स और बहुत सारी बातें आप सभी को जानने को मिली है। सो दोस्तों, हैव अ ब्यूटीफुल मंडे ब्रिस्बेन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप शाइनिंग।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रेस वाणी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाल त्रासदी में अब तक 788 लोगों की मौत, 2500 से ज्यादा लापता, जमीन से आसमान तक युद्ध स्तर पर चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। नेपाल पुलिस ने बताया कि नेपाल में आई बाढ़ के बाद कुल 788 शव बरामद किए जा चुके हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 264 मौतें चितवन में हुई हैं। इसके बाद नवल पारसी ईस्ट में 194, नवल पारसी वेस्ट में 120, गोरखा में 58, नुवाकोट में 52, धारडिंग में 50, तनहुन में 37 और रसवा में 13 मौतें हुई हैं। इससे पहले नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया था कि करीब 2,502 लोग लापता थे। कई प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान जारी है। पहचान न हो पाने के कारण शवों को देश भर के 21 अस्पतालों में रखा जा रहा है। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बदल रहे चीन के बैंक और नाइट क्लब, घटती शादियों के बाद चिनफिंग सरकार का फैसला। चीन में स्थानीय प्रशासन विवाह प्रक्रिया को अधिक से अधिक आसान और सुलभ बनाने के लिए अनोखे कदम उठा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इसके लिए मातृत्व अस्पतालों, बैंकों और नाइटक्लब जैसी अप्रत्याशित जगहों पर विवाह पंजीकरण काउंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में किक्सी फेस्टिवल के दौरान शेडोंग प्रांत के लिंजी जिले के मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल ने एक नई सुविधा शुरू की। अब जोड़े सीधे अस्पताल परिसर में ही कानूनी रूप से विवाह कर सकते हैं। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ साय की तरह रहने वाले मेजर ऋषभ सिंह सान्याल ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साय की तरह रहने वाले चार पैरा स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी ऋषभ सिंह सान्याल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारतीय सेना से समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया है। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ADC के तौर पर काम करते हुए सोशल मीडिया पर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए थे। मार्च 2027 से देश की सभी संस्थाओं में ISTR का पालन करना अनिवार्य, सरकार ने जारी की अधिसूचना। भारत में अगले साल मार्च से सभी संस्थाओं को कानूनी, कमर्शियल, डिजिटल और प्रशासनिक कामों के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का इस्तेमाल करना होगा। सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 की घोषणा कर दी है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत घोषित ये नियम बजट में छपने के 180 दिन बाद लागू होंगे, जिससे मार्च 2027 के आसपास से ISTR अनिवार्य हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। ये नोटिफिकेशन सभी कानूनी, प्रशासनिक और आधिकारिक दस्तावेजों के लिए ISTR को अनिवार्य टाइम रेफरेंस बताता है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रेस वाणी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सुख भक्ति में डूब जाने के लिए भक्ति राज रामायण मंडली एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

ग्रेजुएट चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: ओके, लॉट्स हैपनिंग, बहुत कुछ हो रहा है भाई। तो अपना जहाँ जहाँ आपको जाना है डेट मार्क कर ले, ठीक है?
1: ओके, 7:33. सो हैप्पी बर्थ. ओ, टुडे इज द 31st ऑफ ऑगस्ट. वाओ, हैप्पी बर्थडे इफ इट्स योर बर्थडे टुडे, एंड हैप्पी एनिवर्सरी इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर एनिवर्सरी. वी होप यू हैव एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल डे.
0: ओके, हैप्पी बर्थडे.
1: हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे.

0: सजना तेरे बिना, अभी आपने सुना दोस्तों, और रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान, और आज है मंडे।
1: आई गॉट द डेट राइट टुडे, यू गॉट द डे राइट,
0: और क्या शताक्षी है इस कार्यक्रम के बाद में, फिर 11 बजे से संदेश है और 3 बजे से निव्या, तो कार्यक्रम जरूर सुनेगा दोस्तों। चलिए अगला जो गीत है, जब वी मेट का गाना है,

0: मैं कोई ऐसा गीत बजाऊं।
1: ईमानदारी से बजाओ,
0: ईमानदारी से बजाओ, ईमानदारी से। ईमानदारी, वी आर ऑन रेडियो, 100।

0: चलिए अच्छा सा गाना सुना आपने. और सुमित टप्पू, इट्स योर बर्थडे टुडे बेटा, हैप्पी बर्थडे. और साथ साथ में प्रवीणा, आपका भी जन्मदिन है. मीता रॉय, इट्स योर बर्थडे टू. और अब्दुल सत्तार अजीज, इट्स योर बर्थडे टू माय फ्रेंड. दिस इज द टाइम इट कम्स इन. ओके, सुमित टप्पू इज अ वेरी वेल नोन. Maybe I'll get a song from him too. Later.
1: Later, okay. Yeah. How about I?

0: वाह, बहुत अच्छा लगा सुमित बेटे. आई यूज टू फॉलो हिम फ्रॉम व्हेन ही वाज यंग सिंगिंग व्हेन ही वाज जस्ट यंग एंड ये लाइक आई सेड वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स एंड विद हिज पेरेंट एंड हिज अंकल्स योगेश. ये वंडरफुल फैमिली एंड ही वाज ही इज आई थिंक ही इसका गुरु है रूप जलोटा जी. Yeah, and he sings ghazal. I know long time ago, bahut pehle aaya tha yahan Brisbane mein with Jagjit Singh. He did the opening of that show, and then Jagjit Singh. Yeah, so a great accomplishment. Really nice to hear his voice. Okay, once again, happy birthday. All right, what else? Thanks to Facebook.
1: Huh? What do you mean, what else?
0: What else are you playing now?
1: Oh, well.
0: Or do you want me to play something else?
1: Okay.
0: No, you play.
1: Yeah?
0: Yeah, carry on.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: To everyone tuning into Radio ब्रिस्वानी, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
13: To everyone tuning into Radio ब्रिस्वानी, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
15: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। दोस्तों, आपकी अपनी पहचान। How long have you been on air? How long?
16: Oh, me?
15: No, this radio.
16: 30 years.
15: About 30 years?
16: Yeah.
15: Oh my goodness.
16: We're getting old.
15: Thank you very much for reminding me that. Okay, so are my listeners.
16: You're growing
15: with the radio, aren't you?
16: Yes,
15: anyway, चलिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, आपने रेडियो ब्रिस्बेन को चुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत। ओके, लेट्स प्ले अवर सॉन्ग।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: ओके,
6: I want to play this. Can I play this bhajan, if you don't mind?
7: Yeah, carry on.
6: By Nikhar.
5: Yeah, okay, yeah.
6: This is a
5: He's coming,
6: live,
5: right?
6: This was a concert in Lucknow.
5: All right.
6: Okay, so here we go.

0: Wow, what of a very top Ghana from Mukeshji. I love this song.
1: Me too.
0: Yeah. चाहे आज मुझे ना पसंद करो
1: आखिर में तुम्हें मेरा
0: होना ही होगा चाहे
1: चाहे
0: द्वार दे के बंद करो तो दोस्तों आपको मेरा साथ हमारे साथ आपको देना है हमेशा. आज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है क्या बताऊं मैं मेरा लाइफ इज टू आई शुड राइट अ बुक. हाँ
1: I told you this a long time ago.
0: A man of mishaps. Mera title rahega. Man of mishaps. Oh my goodness, kya batau main?
1: That's a good title actually.
0: Actually, oh thank you very much.
1: it's like why me lord?
0: why me lord?
1: You should rather title it Abhi why me lord.
0: Abhi naya chashma bana mera 2 hafta hua. Aur ek lens uska gir gaya. Ab main kahan कहाँ नहीं खोजा इसको मुझे नहीं मिल रहा है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज
1: इट्स अ चैलेंज.
0: बोलते हैं लुकिंग टोक्यो गोइंग लंदन लुकिंग टोक्यो
1: लंदन या समथिंग टू दैट.
0: सो आई व्हेन दिस हैपन आई सेड व्हाई आई एम आई लुकिंग व्हाई एवरीथिंग सो फनी सो आई स्टार्ट पोकिंग माय
1: आई आई आई
0: सो द लेफ्ट The left eye, the finger.
1: The finger went straight through.
0: So okay, the left lens is out, and my left eye is the weaker one. So anyway.
1: Not helpful, eh?
0: A blind looking fool.
1: Yeah, well, that's a thing.
0: Excuse me. Oh, all right. Okay.
1: All righty.
0: So मैं भग गया. कितना हुआ अभी? कितना बजा?
1: 8:47.
0: Okay.

0: एक बहुत ही प्यारा गीत था दोस्तों, और दोस्ती पर दोस्ती का गाना था ये,
1: फ्रॉम द मूवी दोस्ती। यस,
0: बहुत प्यारा गाना, और उम्मीद है आपको भी गाना अच्छा लगा होगा। चलो कुछ पुराने गीत हम, अब कितना, अब शायद एक दो गाना,
1: जस्ट वन
0: प्रोबेबली। व्हेन डिड द टाइम गो?
1: लेट्स सी, व्हेयर डिड इट गो?
0: अभी तो यही था, किधर चला गया?
1: ऑलराइट,
0: ओके,
1: विद दिस वी विल से आवर नमस्तेस, हैव एन एब्सोल्युटली beautiful day, and we will see you all tomorrow.
0: Okay, take care.
1: God willing.
0: Yep.

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक। रेडियो ब्रसानी 1701 एम पर एक बार फिर से आप हैं आपकी अपनी सताक्षी के साथ और ये है आपका ब्रेकफास्ट शो। जी हाँ, इट हैपेंस, इस वक्त आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं एक बार फिर से। दो घंटे मेरा और आपका साथ रहने वाला है जहाँ हम ढेर सारी बातें तो करेंगे, अपने दिन को और भी खास और खूबसूरत बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो जनाब, इट हैपेंस में आज लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ मुस्कुराहट के पल, कुछ सुकून की बातें, एक कप बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफी, जिसके साथ आप आज के दिन को तलाशने की कोशिश करने वाले हैं, और कुछ ऐसे गाने जो आपके दिन को एनर्जी से भर देंगे, फुल ऑन भर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया से ट्रैक को एंजॉय कीजिए मेरे साथ और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो ब्रसानी 1701 एम। और हाँ, ये मॉर्निंग ट्रैक, आज का ये मॉर्निंग ट्रैक सिर्फ आपके लिए।

गुड मॉर्निंग सुप्रभात उनको जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को सताक्षी के साथ। जानती हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास है और इस खास दिन को हम और भी खास बना देते हैं। जी हाँ, जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपको जिंदगी में वो सब कुछ मिले जो आप डिजर्व करते हैं और आप पाना चाहते हैं। बस मेहनत आप करते रहिए और ऊपर वाला आपका साथ देता रहेगा। जिनके लिए आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो यार मैं हमेशा एक बात कहती हूँ आपसे कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले, उनका साथ निभाने वाले हों तो उनको और क्या ही विश दी जाए। बस यही कहेंगे कि ये साथ और इस साथ का प्यार आपके साथ सारी जिंदगी ताउम्र यूं ही बना रहे। जिनके लिए है आज का दिन स्पेशल और खास, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact प्रेरणा on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

इट हैपेंस, मैं सताक्षी आपके साथ है रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर. यू नो, हमारी एक जिंदगी ना दुनिया के साथ चलती है और एक जिंदगी हमारे दिल के साथ चलती है. एक में हम वक्त गुजारते हैं और दूसरी में हम उसी वक्त को जीना चाहते हैं. जी हाँ, क्योंकि एक जिंदगी जो है वो हमारी जिम्मेदारियों से भरी है, दिखावटीपन से भरी है, लेकिन दूसरी जिंदगी जो है वहाँ हमें अपने चेहरे की स्माइल जबरदस्ती की नहीं लानी होती. जैसे हैं वैसे रहने को दिल करता है, क्योंकि दिल जानता है कि हमारे दिलो दिमाग में हमारे अंदर कितना कुछ भरा हुआ और कितना कुछ चल रहा है. इसीलिए ये जो अपने साथ बिताए गए लम्हे हैं ना, ये जिंदगी के सबसे खास लम्हे होते हैं और हमारी दूसरी जिंदगी बन जाते हैं, जिसमें हम महफूज फील करते हैं, हम सिक्योर फील करते हैं और खुद के साथ बिताए गए ये पल लगता है कि जैसे हमने इन पलों के साथ अपनी जिंदगी को ही जी लिया. आइए फिर उसी जिंदगी के नाम इट हैपेंस में सुनते हैं ये अगला ट्रैक. स्टे ट्यून्ड, आपका अपना रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM.

वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ है। आप रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर। देखिए, आप सबकी लाइफ में ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिसके साथ अगर आप घंटों भी गुजार लें तो लगता है कि कुछ ही वक्त तो गुजरा है, अभी कुछ ही मिनट तो गुजरे हैं। तो ऐसा आपकी लाइफ में जो भी शख्स है ना, उसके कुछ पिक्चर्स, कुछ वॉइस नोट्स, कुछ मैसेजेस, कुछ वीडियोस सेव करके जरूर रख लीजिए। अब मुझसे ये मत पूछिएगा कि क्यों, क्योंकि वक्त इस बात का भी जवाब आपको जरूर देगा, लेकिन यह बहुत जरूरी है उस शख्स के लिए जो आपकी जिंदगी में बहुत मैंडेटरी है। और एक बहुत ही उम्दा शेर भी है ना, एक तस्वीर से लगता है कि हम भी खुश थे, एक आवाज से लगता है कि सब अच्छा है। मेरी दुनिया में वैसे तो कोई भी चीज ठिकाने पर नहीं, पर तुझे देखकर लगता है कि सब अच्छा है। आइए इसी अच्छाई के नाम और उन लोगों के नाम जिनकी वजह से यह अच्छाई है जिंदगी में, सुनते हैं ये अगला ट्रैक। हमारे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक

0: ऑथराइज्ड बाय द
1: वेलकम बैक रेडियो मधुबनी पर साक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक की ओर। जी हाँ, तीन बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है साक्षी। और ये गाने जो है ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं बॉलीवुड के, वो गाने हैं हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड रेडियो मधुबनी, हमारे साथ सुनते रहिए गानों की हैट्रिक। ये पहला ट्रैक है आपके लिए।

बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय
1: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ। वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you, eligibility criteria and T&Cs apply.

अपनी और परायों में क्या फर्क होता है? परायों से आप कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, रोज ही मिलते हैं, गुड मॉर्निंग, और भाई कैसे हो, सब ठीक? हाँ भाई सब ठीक है ना। पराये जो होते हैं वो आपके इस मैं ठीक हूँ पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अपने अपने जो होते हैं वो आपको देखकर बता सकते हैं, आपकी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आप भले ही उनसे कह दें कि मैं ठीक हूँ, वो भरोसा कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो पीछे पड़ जाते हैं, बताओ ना क्या चल रहा है जिंदगी में, नहीं तुमने ये बात ऐसे क्यों कही, नहीं तुम ऐसे तो बात नहीं करते थे, तो वो आपके साथ बार बार आर्ग्यूमेंट करते हैं, आपको परेशान करते हैं और आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं। बट यू नो वो रिश्ता ही क्या जो दिल के करीब भी हो और आपके मैं ठीक हूँ कहने से मान ले कि आप ठीक हैं। वहां पर लोगों को ये भी फीलिंग आती है कई बार कि लग रहा है रास्ते अलग हो गए। जी हाँ, क्योंकि अलगाव का सबसे बुनियादी रीजन तो यही है कि सामने वाला ये यकीन कर ले कि आप वाकई ठीक हैं, वरना जो दिल के करीब है ना वो अल्फाजों से, आवाज से, यहाँ तक कि चेहरे से बता देते हैं कि जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आइए इट हैपेंस में आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। इसी बात पर सुनते रहिए आपके अपनों के नाम, ये अगला ट्रैक, और बने रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस में रेडियो प्रिस्वानी पर।

कई बार एक बात होती है ना हमारे साथ, बहुत लोगों के साथ हुई होगी आई गेस, कि कुछ लोग जिंदगी में हैं, बहुत खास हैं, बहुत अहम हैं, फिर वो आपको सडनली छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें बेहतर की तलाश है, उन्हें लगता है कि आपसे बेहतर उन्हें कोई और मिल जाएगा, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद वो आपकी जिंदगी में वापस लौट आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि शायद वो जिसे ढूंढने निकले थे, यानी आप जैसा इंसान, वो उन्हें कहीं मिला ही नहीं, और इसलिए वो आपकी लाइफ में वापस आ गए। फिर नए रिश्ते बन जाते हैं, नई दोस्ती हो जाती है, चलिए मोहब्बत भी फिर से हो जाती है। पर सवाल पता है क्या है कि एक इंसान क्या दूसरे इंसान को रिप्लेस कर सकता है, उसकी जगह ले सकता है? नहीं, एक इंसान की जिंदगी में दूसरा इंसान एंट्री तो कर सकता है, लेकिन वो पहले वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसकी जगह, उसकी यादें, उसकी बातें, वो सब कुछ अपनी जगह है, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा और नहीं है ना। ना आपका बिहेवियर, ना आपकी केयरिंग, ना आपके इमोशंस दूसरे में नहीं हो सकते, है ना। आइए फिर, आप अपनी कार्बन कॉपी हैं, आप ओरिजिनल पीस हैं, और आपके नाम भी अगला ट्रैक है। सदाशी के साथ सुनते रहिए छापन्स रेडियो ब्रिस्वानी पर।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।